0: You are tuned to the voices of the subcontinent.
1: रेडियो हारमोनी के श्रोताओं को अरविंद गुप्ता का प्रणाम। आप सबका हार्दिक स्वागत है। रेडियो हारमोनी हर बुधवार शाम 7 से 8 बजे तक पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर आपके लिए आता है। रेडियो हारमोनी आपको समसामयिक मुद्दों, महत्वपूर्ण घटनाओं, समाचारों, विचारों और समुदाय से जुड़े मुद्दों की कवरेज लाता है। जानकारी और मनोरंजन से भरपूर इसे 1 घंटे के लिए आप हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर को पड़ रही है। हम आज रेडियो हारमोनी पर कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत अभिलिप्सा पांडा के इस खूबसूरत कृष्ण भजन से कर रहे हैं।

बुला ले मुझे कान्हा। अभिलिप्सा पांडा ने ये बहुत सुंदर श्री कृष्ण भजन गाया। दोस्तों, सितंबर का महीना लग चुका है। इसमें कुछ तिथियां इस प्रकार हैं, 4 को कृष्ण जन्माष्टमी, 4 का ही काली जयंती, 5 को टीचर्स डे, 13 की वराह जयंती, 14 को गणेश चतुर्थी और हिंदू दिवस और सिद्धि विनायक चतुर्थी, 15 का विश्वेश्वराया जयंती और इंजीनियर्स डे, 16 को बलराम जयंती है, 17 को विश्वकर्मा पूजा, 19 का महालक्ष्मी व्रत शुरू होता है, 23 को वामन जयंती है और 23 का ही ऑटम्नल इक्विनॉक्स और 25 को गणेश विसर्जन। इंटरनेशनल डेज में बहुत सारे हैं, तो मैं कुछ एक डेढ़ हफ्ते के जो पढ़ रहे हैं वो आपको बता देता हूं, बाकी आगामी कार्यक्रम में सुनाऊंगा। 5 को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस वीमेन एंड गर्ल्स, और 7 को है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा है। 7 को इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन और वर्ल्ड ड्यूशेन अवेयरनेस डे, 8 को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 9 का इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। आगे आते आते अगले हफ्तों में बाकी इंटरनेशनल डेज के बारे में भी बताता चलूंगा। तो मित्रों, जैसे मैंने कहा, 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी है और रेडियो हार्मनी आज आपके लिए कृष्ण जन्माष्टमी पर ये खास कार्यक्रम लेकर आया है। कृष्ण जन्माष्टमी 2026 शुक्रवार 4 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी और आधी रात की पूजा 5 सितंबर की सुबह तक चलेगी। तो इसकी त्यौहार की मुख्य तारीख और समय इस तरह से हैं मुहूर्त के। 4 सितंबर शुक्रवार 2026 अष्टमी तिथि शुरू होती है 4 सितंबर को सुबह 2:25, ये सब हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से है। अष्टमी तिथि खत्म होती है 5 सितंबर को सुबह 12:13 पर। निशिता पूजा मुहूर्त आधी रात का समय और 4 सितंबर रात 11:13 से रात के 11:59 तक। दही हांडी या नंदोत्सव ये शनिवार को पड़ेगा 5 सितंबर को। और दोस्तों, इस हमारे त्यौहार की मुख्य परंपराएं कुछ इस तरह से हैं। व्रत है, भक्त पूरे दिन कड़ा व्रत रखते हैं और आधी रात के जन्मोत्सव के बाद इसे तोड़ते हैं। आधी रात का अभिषेक, मंदिरों और घरों में भगवान कृष्ण की मूर्ति को दूध, शहद और गंगा जल से नहलाया जाता है। भोग होता है, प्रसाद में मीठा मक्खन, मिश्री और धनिया पाउडर की मिठाई यानी पंजीरी शामिल है।

रामकृष्ण मिशन के स्वामी सर्वज्ञानंद की आवाज में ये था मधुराष्टकम। दोस्तों, भगवान कृष्ण का जन्म हिंदू परंपरा में सबसे पवित्र घटनाओं में से एक है, जो अंधेरे पर दिव्य प्रकाश की जीत का प्रतीक है। कृष्ण के जन्म की कहानी, भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा में हुआ था। यह युग राक्षस राजा कंस के अत्याचार से त्रस्त था। कंस ने अपने ही पिता राजा उग्रसेन से राजगद्दी छीन ली थी और बहुत क्रूरता से राज किया था। कंस की बहन देवकी की राजा वासुदेव से शादी के दौरान एक दिव्य आवाज यानी आकाशवाणी ने भविष्यवाणी की कि देवकी का आठवां बेटा कंस का नाश करेगा। इस बात से डरकर कंस ने देवकी और वासुदेव को एक कड़ी सुरक्षा वाली काल कोठरी में बंद कर दिया। उसने जन्म के तुरंत बाद उनके पहले 6 बच्चों को बेरहमी से मार डाला। 7वां बच्चा बलराम उसकी जान बचाने के लिए दिव्य रूप से रोहिणी वासुदेव की दूसरी पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया।

ये था श्री दामोदर अष्टकम और ये अष्टकम लिया था पद्म पुराण से जो कि श्री सत्यव्रत मुनि ने लिखा था। इनको संगीतबद्ध किया मृदुल कलिता ने और गाने वाली थी मोहिनी देवी दासी जिनका असली नाम मीनू नायर है। ये इस्कॉन बैंगलोर की पेशकश थी। दोस्तों जन्म की बात हो रही है कृष्ण जी की तो भाद्रपद महीने की अष्टमी अमावस्या का आठवां दिन की अंधेरी बरसाती रात में कृष्ण आठवें बच्चे के रूप में पैदा हुए। उनके जन्म के समय जेल की कोठरी में एक तेज रोशनी भर गई। भगवान विष्णु का चार भुजाओं वाला रूप प्रकट हुआ और उन्होंने वासुदेव को नवजात शिशु को गोकुल गांव ले जाने और उसे नंद और यशोदा की नवजात बेटी से बदलने का आदेश दिया। भागने में मदद के लिए चमत्कार हुए। वासुदेव की कलाई से लोहे की जंजीर गिर गई। जेल के दरवाजे खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को एक विकर टोकरी में रखा और एक भयंकर तूफान में बाहर निकल गए। जैसे ही वासुदेव ने उफनती यमुना नदी पार की पानी उनके गुजरने के लिए अलग हो गया और कई सिरों वाला शेष नाग बच्चे को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए छतरी की तरह उनके ऊपर मंडरा रहा था।

0: दर्शन दो घनश्याम नाथ, ये फिल्म थी नरसिंह भगत जो 1957 में आई थी। गाने वाले थे हेमंत कुमार, सुधा मल्होत्रा और मन्ना डे। संगीत दिया था रवि ने। मित्रों, वासुदेव गोकुल पहुंचे बिना किसी की नज़र में आए, बच्चों की अदला बदली की और यशोदा की बच्ची के साथ जेल की कोठरी में लौट आए। कंस की हार का पूर्वाभास कैसे हुआ? जब कंस नवजात बच्ची को मारने पहुंचा तो वह उसके हाथों से फिसल गई, भयंकर देवी दुर्गा में बदल गई और उसे चेतावनी दी कि उसका विनाश करने वाला पहले ही कहीं और पैदा हो चुका है और सुरक्षित है। कृष्ण गोकुल में एक ग्वाले के रूप में शांति से बड़े हुए। आखिरकार भविष्यवाणी को पूरा करने और कंस का वध करने के लिए मथुरा लौट आए। कृष्ण के जन्म की कहानी का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है जो आज भी बहुत प्रासंगिक है।
1: You're listening to People Powered Radio 2XFM 98.3, streaming online at 2XFM.org.au.
0: मित्रों, आप सुन रहे हैं रेडियो हार्मनी जो हर बुधवार को शाम 7 से 8 बजे तक प्रसारित होता है People Powered Radio 2XFM 98.3 पर। मैं आपका प्रस्तुत करता हूं अरविंद गुप्ता और आज हम आपके लिए खास पेशकश लाए हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर।

मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसे गाया था मुकेश ने। फिल्म थी चरणदास जो 1977 में आई थी। संगीत दिया था राजेश रोशन ने और इसके बोल थे राजेंद्र कृष्ण के लिखे हुए। बुराई पर अच्छाई की जीत। कंस घमंड, ईगो और अत्याचार को दिखाता है, जबकि कृष्ण शुद्ध चेतना, सच्चाई और प्यार को दिखाते हैं। कहानी भक्तों को भरोसा दिलाती है कि बुरी ताकतें कितनी भी ताकतवर क्यों न लगें, आखिरकार नेकी धर्म की ही जीत होती है। जन्म आधी रात को होता है, जो रात का सबसे अंधेरा समय होता है। यह इस बात का प्रतीक है कि जब इंसानी दुख अपने चरम पर पहुंच जाता है और अज्ञानता इंसानियत को अंधा कर देती है, तो संतुलन बनाने के लिए ईश्वरीय ज्ञान और कृपा प्रकट होती हैं। बेड़ियां हटना और तेज बहती नदी का दो हिस्सों में बंटना, यह दिखाता है कि जब कोई भक्त ईश्वर, जिसे वासुदेव कृष्ण को ले जाते हुए दिखाते हैं, उनकी शरण लेता है, तो दुनिया की सभी रुकावटें, डर और कमियां खत्म हो जाती हैं।

चौलोरे मन वृंदावने, ये कृष्ण भजन बंगाली भक्ति गीत था। ये 2025 का श्री कृष्ण सॉन्ग माना गया है। इसे गाया था मन्ना डे ने, बोल लिखे थे देवो प्रसाद चक्रवर्ती ने, संगीत दिया था मृणाल बनर्जी ने। भगवान कृष्ण को 108 नामों से जाना जाता है, जिनमें से हर एक उनके जीवन के किसी खास दिव्य गुण, बहादुरी के काम या प्यारे गुण को दिखाता है। इनमें से 10 प्रमुख हैं, जैसे कृष्ण, जिसका मतलब है, अर्थ है सबसे आकर्षक, या जिसका रंग सांवला रात जैसा हो। गोपाल, गायों का रक्षक, गो का मतलब गाय, पाल का मतलब रक्षक। माधव, लक्ष्मी धन की देवी के पति या बसंत लाने वाले। गोविंदा, वो जो गायों और इंद्रियों को खुशी देता है। केशव, राक्षस केशी का वध करने वाला या सुंदर लंबे बालों वाला। वासुदेव, वासुदेव का बेटा या वह दिव्य आत्मा जो हर जगह रहती है। दामोदर, वह जिसे उसकी माँ यशोदा ने अपने पेट उदार के चारों ओर रस्सी दमा से बांधा है। मुरारी, राक्षस मुरा का नाश करने वाला। श्याम सुंदर, जो सांवले रंग के होते हुए भी बहुत सुंदर है। योगेश्वर, सभी योग और आध्यात्मिक विद्याओं के सबसे बड़े भगवान। फिर कुछ और नाम प्रसिद्ध हैं, जैसे कि उनका बचपन की शरारतों के हिसाब से माखन चोर। माखन चोर जो गांव की ग्वालिनों से मक्खन चुराता था। बाल कृष्ण यानी दिव्य बालक, उनके बहादुरी भरे कारनामे जैसे गिरधारी, पहाड़ उठाने वाला, उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। कालिया मर्दाना, कई सिर वाले कालिया सांप को कुचलने वाले। महाभारत में उनकी भूमिका के हिसाब से नाम था पार्थ सारथी। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान पार्थ यानी अर्जुन के सारथी। जगन्नाथ, ब्रह्मांड के भगवान, जो सभी जीवों की किस्मत तय करते हैं।

हे रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। ये था किशोर कुमार ने की आवाज में एक गीत। फिल्म थी छोटी बहू जो 1971 में आई थी। गाने वाले थे किशोर कुमार और तो म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी। दोस्तों दामोदर जो नाम है इसका अर्थ है रस्सी से बंधा हुआ। इसके पीछे एक कहानी है, क्या आप जानते हैं? दामोदर नाम संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, दाम यानी रस्सी और उदार यानी पेट। तो एक सुबह गोकुल में माँ यशोदा मक्खन मथ रही थी, छोटे कृष्ण को भूख लगी तो वे दूध के लिए उनके पास रेंगते हुए गए। जब यशोदा को उबलते दूध के बर्तन को बहने से बचाने के लिए किचन में भागना पड़ा तो कृष्ण परेशान हो गए। उन्होंने उनका मिट्टी का मक्खन का बर्तन तोड़ दिया, मक्खन बिखेर दिया और बचा हुआ मक्खन बंदरों को खिलाने के लिए भाग गए। गंदगी वाली जगह पर लौटकर यशोदा ने शरारती कृष्ण का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। जब तक वह अपना काम खत्म नहीं कर लेती तब तक उसे मुसीबत से बचाने के लिए उन्होंने उसे एक भारी लकड़ी के ओखली से बांधने का फैसला किया। यशोदा रस्सी का एक टुकड़ा लाई लेकिन जब उन्होंने उसे कृष्ण के पेट के चारों ओर बांधने की कोशिश की तो वह ठीक 2 अंगुल छोटा था। उन्होंने उसमें एक और रस्सी जोड़ दी लेकिन वह भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। चाहे वो कितनी भी रस्सियां जोड़ लें कुल लंबाई हमेशा ठीक 2 अंगुल कम रह जाती थी। 2 अंगुलियां भगवान को बांधने के लिए जरूरी 2 चीजों को दिखाती थी, बहुत ज्यादा इंसानी कोशिश। भगवान को बांधने के लिए जरूरी 2 चीजों को दिखाती थी बहुत ज्यादा इंसानी कोशिश

ओखली उनके बीच फंस गई और हल्के से खींचकर कृष्ण ने पेड़ों को उखाड़ दिया। दो दिव्य देवता जिन्हें पेड़ के रूप में खड़े होने का श्राप मिला था, खंडहर से निकले, कृष्ण को प्रणाम किया और आजाद हो गए।

अच्युतम केशवम, ये था दामोदर पर एक भजन। और मित्रों, आपको ये कार्यक्रम हमारा पसंद आया होगा। आज का हमारा खास कार्यक्रम था कृष्ण जन्माष्टमी पे, जो 4 तारीख को पड़ रही है। इसके साथ ही 8 बजने वाले हैं, तो मुझे आपसे अलविदा लेनी होगी। और अगले बुधवार फिर आपसे मिलूंगा शाम 7 से 8 बजे तक पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर। तब तक के लिए अरविंद गुप्ता का प्रणाम, और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारा अगला कार्यक्रम है लैटिनो अमेरिकन आओराम।